0: web surfer, apa karkarna fast internet.
1: Tapai sunde hununcha radio and RN 99.1. Sabai kalagi sujana.
2: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो दोहोरी